सर जी ऑन एयर मिल रहा है, हमारी आवाज़ आ रही है। सर जी टाइम मिला लेते हैं, सुबह के 5:24, 11:12, 13 सेकंड हुए हैं, बस कंप्यूटर मन टेस्टिंग करते हैं सर।

0: कंप्यूटर नंबर टू टेस्टिंग सर।
1: आती तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो
0: टेस्टिंग।